अनंत गुणमय बुद्ध की निर्वाणदत्त धर्मदत्त बुद्धिदत्त शेष प्रज्ञे प्रतीक्षण हृदय में जो